0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 38 minuti.
1: Werewolf. I was murdered, an unnatural death. And now I walk the earth in limbo until the werewolf's curse is lifted.
2: मुझे स्पीकर की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है आई एम द फोक सिंगर एंड फोक मीन्स फोक सिंगिंग बेस्ड अपॉन वॉइस इट्स नॉट बेस्ड अपॉन द मैकेनिकल आर द डिजिटल आर द इंस्ट्रूमेंट अदर थिंग्स फोक मीन्स नेचुरल इमीडिएट व्हाट इज दिस नॉनसेंस बस ओके ठीक है शुरू करें